0: एक बात बोले श्री काली का माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: प्रोपाइटर भोला कुमार श्रेष्ठ 98 43 21 43 68, बलराम कर्मचार्य 98 44 13 83 14, मा प्लानचोक बेकरी सामुदायिक अस्पतालको अगाडि चरीकोट दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

लड़े हो ढोगा खोलना भन्दे आप ढोगा छोड़े दिन्छु सजी दुख दिन्छु यार म त बाहिर लड़ी दिन्छु मैं बाहर।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार, रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैनेको थपलो साथ में गाजबाट म बद्री प्रसाद सागबाट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 30 तारीख भाद्र 14 गते आइतबार द्वितीया तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

सारी छयाहुन राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडाखुन सवले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सदवा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत स

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांत बाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम चक्षुम।

कृष्ण जीले अर्जुनलाई वहाँ आत्मज्ञान दिनुभयो कुली क्षेत्रमा, आत्मज्ञान दिनुभयो कुली क्षेत्रमा, आत्मज्ञान दिनुभयो कुली क्षेत्रमा।

आमा का पौवा घर मेरो आहाले पूर्णा गाउँ हो। म टेक बहादुर सुवेडी 78 वर्ष को भई म शैलुङ एफएम में एउटा सिलोक भरौं भनेर अनिखेर आको सारा।